0: Dolayısıyla senin program ki ağzımı kas kas kadron kahul asasımat firmalıcı.
1: Türkiye के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा है कि हम फलस्तीनी रियासत के कायम के लिए पुरअज़म जद्दोजहद जारी रखेंगे।
0: तुर्की के वजीर खारजा खाकान फिदान ने लीबिया के अपने अहम दौरे को मुकम्मल कर लिया है।
1: पाकिस्तान और नॉर्वे के वज़राए खारजा ने आज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुलाकात की है।
0: पाकिस्तान ने कहा है कि अमरीका ईरान ने जंगबंदी में 60 रोज़ा तौसी पर इतफाक कर लिया है।
1: ईरान ने ऐलान किया है कि अमरीका और इसराइल को 10 खरब डॉलर का माहौलियाती जुर्माना अदा करना चाहिए।
0: और अब खबरें तफसील के साथ।
1: तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा है कि हम फलस्तीनी रियासत के कयाम के लिए पुरअज़म जद्दोजहद जारी रखेंगे। इत्तला के मुताबिक सदर एर्दोआन ने फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात के दौरान आज़ाद फलस्तीनी रियासत के साथ तुर्की की हिमायत का इरादा किया है। सदर अब्बास ने भी तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को इंतहाई अहम करार दिया है। वाज़ेह रहे कि सदर एर्दोआन ने बुध के रोज़ अंकरा में सदर अब्बास के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि तुर्की मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस के दारुल हुकूमत वाली और 1967 की सरहदों पर मुश्तमिल एक खुद मुख्तार और जुग्राफियाई तौर पर मरबूत फलस्तीनी रियासत के लिए पुरअज़म शक्ल में काम जारी रखेगा।
0: तुर्की के वजीर खारजा खाकान फिदान ने लीबिया के अपने अहम दौरे को मुकम्मल कर लिया है। त्राबलुस और बेंगाज़ी में आला सतही मुलाकातें करने वाले वजीर खारजा फिदान ने इस बात पर जोर दिया कि तुर्की लीबिया के इत्तेहाद के अमल में अपने तामीरी और मुसालहती किरदार को पुख्ता अज़म के साथ जारी रखेगा। लीबिया में मशरक़ी और मगरबी दोनों धड़ों के साथ राबता कायम करने वाले एक कलीदी अदाकार होने की अहमियत को उजागर करते हुए फिदान ने बताया कि दोनों फरीकैन मुल्क के इत्तेहाद की भरपूर हिमायत करते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि गुज़िश्ता 15 सालों से हंगामा खेज दौर से गुजरने वाले इस मुल्क में 2019 से कायम होने वाले अमन व सुकून में तुर्की की तामीरी खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा रहा है। खित्ते में तिजारती सलाहियत की तरफ भी तवज्जो दिलाते हुए वजीर खारजा फिदान ने लीबिया में तुर्क तामीराती और सनअती कंपनियों की कामयाबियों की तारीफ की और कहा कि यह तआवुन मजीद बढ़ता रहेगा। वजीर खारजा लीबिया के दौरे के बाद इलाकई मामलात और फलस्तीन के मसले पर बातचीत के लिए मिस्र रवाना हो गए।
1: पाकिस्तान और नॉर्वे के वज़राए खारजा ने आज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तय पाने वाली मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के साथ साथ बैनुल अक़वामी और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया है। पाकिस्तान वजारत खारजा के जारी करदा बयान के मुताबिक नॉर्वे के वजीर खारजा एस्पिन बार्थ हाइडे अपने पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक़ डार से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद पहुंचे। ये दौरा गुज़श्ता एक तिहाई में पाकिस्तान और नॉर्वे के माबैन आला तरीन सतह का दौरा है। बयान में कहा गया है कि दोनों वज़रा ने दो तरफा ताल्लुकात का तफसीली जायजा लेने के अलावा इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर गुफ्तगू की और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में तआवुन को मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा किया है। साकदार ने अपने इफ्तिताही खिताब में कहा है कि इनका मुल्क मुख्तलिफ शोबों में नॉर्वे के साथ दोतरफा ताल्लुकात और तआवुन को मज़ीद वुसअत देना चाहता है। उन्होंने इस बात पर भी रोशनी डाली कि नॉर्वे की तरक्की में 60,000 अफराद पर मुश्तमिल पाकिस्तानी बरादरी अहम किरदार अदा कर रही है। जवाब में नॉर्वे के वजीर खारजा ने अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी को खत्म करने के लिए इस्लामाबाद के सालिसाना किरदार की तारीफ की। उन्होंने मशरक वस्ता की मौजूदा सूरत हाल को आलमी अमन और मईशत के लिए नुकसानदेह करार देते हुए पाकिस्तान की क्यादत में की जाने वाली सालिसाना कोशिशों का हवाला दिया और कहा है कि ये दुनिया के लिए एक हकीकी खिदमत है।
0: पाकिस्तान ने कहा है कि अमरीका और ईरान ने जंगबंदी में 60 रोज़ा तौसी पर इतफाक कर लिया है। पाकिस्तान के हुकूमती ज़राए ने बुध को जारी करदा बयान में ऐलान किया है कि मौजूदा माहदे की मियाद 17 अगस्त को ख़त्म हो रही है, लिहाजा अमरीका और ईरान ने पाकिस्तान की सालसी में जंगबंदी में 60 रोज़ा तौसी पर इतफाक़ कर लिया है। सालसी के अमल से वाकिफ ज़राए ने कहा है कि दोनों फरीकैन ने फायरबंदी की मियाद में इजाफे के लिए सालसों को रजामंदी दे दी है। ताहम दुरुस्त तौसी मियाद का फैसला कर सकने के लिए दोनों फरीकैन के दरमियान पैगाम का तबादला भी जारी है।
1: ईरान ने ऐलान किया है कि अमरीका और इसराइल को 10 खरब डॉलर का माहौलियाती जुर्माना अदा करना चाहिए। तेहरान इंतजामिया ने खलीज फारस और बहरा ओमान में फौजी कार्रवाइयों और साल साल से जारी समुद्री आलूदगी के बायस होने वाले माहौलियाती नुकसान के अजाले का मुतालबा किया है। ईरान वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने जजीरा कशम के साहिलों पर तेल के बहाव से होने वाली हालिया आलूदगी की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि ये खत्ते में होने वाली बड़े पैमाने की माहौलियाती तबाही का महज एक छोटा सा हिस्सा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि खत्ते के हयातियाती निजाम को शदीद नुकसान पहुंचा है और ईरानी साहलों पर ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। बकाई ने आबनाए हुरमस और इसके गिरदोनवाह को फौजी कार्रवाइयों का मैदान बनाने वाले ममालिक की कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारी की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि तजारती जहाजरानी और सस्ती तवानाई से फायदा उठाने वाले तमाम फरीकैन को इस माहौलियाती नुकसान की तलाफी करनी चाहिए।
0: فرانس اور دیگر 25 ممالک کے علاوہ یورپی یونین کے نمائندہ اعلیٰ برائے خارجہ امور و سلامتی پالیسی نے ایران کے مظاہرین کو سزائے موت دینا جاری رکھنے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ فرانس کی وزارت خارجہ نے بروز بدھ جاری کردہ بیان میں کہا کہ مخالفین کو خاموش کرانے، شہریوں میں خوف و ہراس پیدا کرنے اور اپنے بنیادی حقوق کے استعمال پر افراد کو سزائے موت دینے کو کسی صورت بھی جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بیان پر دستخط کرنے والے ممالک نے زور دیا ہے کہ ایرانی عوام کو بغیر کسی خوف کے آزادی اظہار اور پرامن اجتماع کے حق کا استعمال کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایرانی حکومت سے سزائے موت پر عمل درآمد کو فوری طور پر بند کرنے اور منمانی شکل میں حراست میں لیے گئے تمام افراد کو رہا کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بیان میں ایران سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ تبدیلی کا مطالبہ کرتی عوام کی آواز سنے اور انسانی حقوق کے احترام کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ اس بیان پر فرانس، کینیڈا، جرمنی، آسٹریلیا، ڈنمارک، اسپین، نیوزی لینڈ، نیدرلینڈز، پرتگال، سویڈن اور برطانیہ سمیت دیگر 25 ممالک کے علاوہ یورپی یونین کے نمائندہ اعلیٰ برائے خارجہ امور و سلامتی پالیسی کایا کلاس نے بھی دستخط کیے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے انسانی حقوق اور بین الاقوامی قانون سے متعلق ان بیانات پر مذکورہ ممالک کو منافقت کا قصوروار ٹھہرایا اور ایکس جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ فرانس جیسے ممالک کو دنیا کو انسانی حقوق اور بین الاقوامی قانون کے درس دینا بند کر دینا چاہیے۔ منافقت بالکل واضح اور شرمناک ہے۔ اسرائیل کی طرف سے غزہ میں جاری نسل کشی کی حمایت اور ایران کے خلاف آپ کی جارحیت نے آپ کے اپنے بارے میں ہر قسم کے اخلاقی برتری کے غرور کو ختم کر دیا ہے۔

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: इसराइल के फजाई हमलों में लुबनानी सरहद के जनूबी हिस्से में मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने के दौरान वजीर दिफा कॉट्स ने इसराइली अफवाज को लुबनान, शाम और गजा के मकबूजा इलाकों में बरकरार रखने का वाज़ेह अहद किया है। इसराइली वजीर दिफा इसराइल कॉट्स ने यह बयान जनूबी लुबनान में इसराइली अफवाज के जेर कब्जा के इलाके से अपने रिकॉर्ड शुदा खिताब में दिए हैं। खिताब में कार्ट्स ने मगरिब में बहरा रूम के साहिल से लेकर मशरिक में कला बोफोर्ट और जबल शेख के मैदान दामन तक फैले हुए इस खित्ते का जिक्र करते हुए कहा है कि जैसा कि वजीर आजम बिन्यामीन नेतन्याहू और मैंने वाज़े तौर पर कहा है कि हम इस सिक्योरिटी जोन से पीछे नहीं हटेंगे, हम यहां से नहीं जाएंगे और इनखला नहीं करेंगे, हम इस इलाके को महफूज बनाएंगे और शुमाली शहरियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। कार्ट्स ने कहा है कि इसराइल लुबनान, शाम या गजा के सिक्योरिटी जोन से

0: किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटा जाएगा। वज़ीर दिफा ने दावा किया है कि इसराइली अफवाज को शुमाली इसराइली बस्तियों और अपने फौजियों के तहफ्फुज़ के लिए इस इलाके में तायुनात किया गया है। उन्होंने ये दावा भी किया है कि फौज ने किला वो फोर्ट पर कब्जा कर लिया है जो इनके बकौल मेतोला और दीगर शुमाली बस्तियों की हिफाजत करता है।
1: यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमरीका से मजीद पैट्रियाट मिज़ाइलों का मुतालबा कर दिया है। CNN को दिए गए एक इंटरव्यू में यूक्रेनी रहनुमा ने कहा कि रूस के बढ़ते हुए बैलिस्टिक मिज़ाइल हमलों को रोकने के लिए जिन मिज़ाइलों की ज़रूरत है उनका सिर्फ 10वां हिस्सा ही उनके पास मौजूद है। असलहे के ज़खायर के ख़त्म होने के दहाने पर पहुँचने का जिक्र करते हुए ज़ेलेंस्की ने अमरीका से खुली अपील कर दी। यूक्रेनी रहनुमा ने वाज़ेह किया कि वाशिंगटन के पास मौजूद मिज़ाइलों के ज़खीरे का सिर्फ 5% फरोख्त करना मौसम सरमा के लिए काफ़ी होगा। उन्होंने ये भी बताया कि वो पैदावार में तेज़ी लाने के लिए पैट्रियाट लाइसेंस का इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ज़ेलेंस्की ने इस सूरत हाल को जंग के आगाज़ से अब तक के अपने सबसे बड़े इम्तहानात में से एक करार दिया है। दूसरी जानब रूसी सदर पुतिन के इलाकाई मुतालबात को कबूल न करने के अज़्म को दोहराते हुए ज़ेलेंस्की ने इस बात पर जोर दिया कि सिक्योरिटी की ज़मानतें यूक्रेन के लिए इंतहाई अहम तरीन हैसियत रखती हैं।
0: इंडोनेशिया के जजीरे बाली के करीब एक मुसाफिर कश्ती में आग लगने के नतीजे में एक खातून मुसाफिर हलाक हो गई है। हुकाम के मुताबिक आग नए लोम्बोक में जुमेरात को रूस एक फेरी बोट में दौरान सफर आग लगने के नतीजे में एक मुसाफिर खातून हलाक हो गई और दर्जनों मुसाफिरों ने समंदर में छलांग लगा दी। समंदर में कूदने वालों में से ताहाल 5 अफराद लापता हैं। फौरी तौर पर जायवकुआ पर पहुंचने वाले एक बहरी जंगी जहाज और करीब से गुजरती एक और मुसाफिर फेरी बोट समेत मुख्तलिफ बहरी जहाजों ने मजमुई तौर पर 211 अफराद को बचाकर साहल तक पहुंचा दिया है। हादसे में एक 19 साल लड़की मुर्दा हालत में पाई गई है। जजीरे लोम्बोक के माताराम सर्च एंड रेस्क्यू दफ्तर ने कहा है कि हादसे से फौरन बाद शुरू की गई इमदादी कार्रवाईयों में तवज्जो ताहाल लापता 5 मुसाफरों की तलाश पर मरकूज रखी गई है। वाज़ह रहे कि इंडोनेशिया में समंदरी हादसात अक्सर पेश आते रहते हैं। ये मुल्क 17,000 से ज़ायद जज़ायर पर मुश्तमिल एक मजमूआ जज़ायर है और रोज़मर्रा आमदोरफ्त और सियाहत के लिए बड़ी हद तक बहरी ज़राए रसल व रसाइल पर इन्हज़ार करता है।
1: कोलंबिया में जलजिले के नतीजे में हलाकतों की तादाद 265 हो गई है और मुल्क में 3 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान किया दिया गया है। कोलंबिया ने पीर को आने वाले 7.4 की शिद्दत के तबाहकुन जलजिले के मुतासिर की याद में 3 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान किया। जलजिले में हलाकतों की तादाद 265 हो गई है। कम अज़ कम 3,494 अफराद जख्मी और 496 ताहाल लापता हैं। सदर एबेलार्डो डिला एस्पेरेला ने ऐलान किया है कि तमाम सरकारी इमारतों और सफारतखानों पर परचम सरनगू रखे जाएंगे। यह जलजिला पीर के रोज़ मकामी वक्त के मुताबिक सुबह सुबह चकू के इलाके सान होजे डेल पालमार के करीब आया था। जलजिले की गहराई 107 किलोमीटर थी और इसे रवां सदी में कोलम्बिया का मोहलक तरीन जलजिला करार दिया गया है।
0: पोलैंड में 19 मिलियन शहरियों का तिब्बी डाटा चोरी हो गया है। TVP वर्ल्ड चैनल की खबर के मुताबिक पोलैंड के वजीर बराए डिजिटल अमूर कश्तेनोव गाकोस्की ने बुध के रोज़ जारी करदा बयान में बड़े पैमाने पर तिब्बी डाटा लीक होने और इस वाकये से तकरीबन 19 मिलियन शहरियों के मुतासर होने का ऐलान किया है। गाकोस्की ने कहा है कि एक गैर मामूली साइबर हमले के नतीजे में तकरीबन 19 मिलियन पोलिश शहरियों का डेटा लीक हो गया है। ये हमला डॉक्टरों और क्लिनिकों के जेर इस्तेमाल और मुल्क में खुफिया तिब्बी रिकॉर्ड फराहम करने वाले बड़े तरीन इदारों में से एक के मरीजों के ऑनलाइन रिकॉर्ड प्लेटफॉर्म को निशाना बनाकर किया गया है। उन्होंने कहा है कि कंपनी ने भी 19 मिलियन मरीजों का रिकॉर्ड चोरी होने की तस्दीक की और कहा है कि इस रिकॉर्ड को आपस में जोड़ा जा सकता है। वजीर ने कहा है कि साइबर सिक्योरिटी के इदारे वाकये की नौयत और इस्बात के तायुन के लिए काम कर रहे हैं और हुकूमत ने चोरी से मुतल्लिका तमाम मालूमात के तहफ्फुज़ के लिए इकदामात किए हैं। गाकोस्की ने कहा है कि फिलहाल डेटा के किसी दूसरे मुल्क की तरफ से चोरी किए जाने के बारे में कोई इशारा नहीं मिला। उन्होंने मजीद कहा है कि कोई भी ना तो किसी से मुज़ाकरात करेगा और ना ही किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग के सामने झुकेगा।
1: आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि जमहूरिया कांगो में तबाही मचाने वाली एबोला की यह वबा तारीख की सबसे मोहलक तरीन वबा बनने जा रही है। फरवरी से फैलने वाली और मई में बाकायदा तौर पर करार दी जाने वाली इस वबा में मरीजों की तादाद 4,300 से तजावज़ कर चुकी है जबकि 2,000 से ज़ायद अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। हुकाम खबरदार कर रहे हैं कि अगर ये वबा इसी मौजूदा रफ्तार से जारी रही तो यह 2014 तथा 2016 की उस वबा को भी पीछे छोड़ सकती है जिसमें 11,000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। बताया गया है कि खित्ते में जारी झड़पों और तनाज़ियात की वजह से सिर्फ 30% मरीजों तक ही रसाई मुमकिन हो रही है और इस

बहरिया में योम बहरिया के नाम से मनाया जाने लगा। 27 सितंबर का दिन सिर्फ माजी की याद ताज़ा करने के हवाले से ही नहीं बल्कि अपने अजदाद के बहरी विरसे को जिंदा रखने के हवाले से भी इंतहाई अहमियत का हामिल दिन है। ये इन फतूहात का नतीजा था कि मशरकी बहरा रूम तुर्क बहरिया के लिए सुकड़ कर एक झील की शक्ल इख्तियार कर गया। लेकिन दूसरी तरफ जजीरा कब्रस का 1489 से उस्मानियों की रकीब गैर मुल्की रियासत वीनस की हुकमदारी में होना जंगी हिकमत अमली के एतबार से बहुत बड़ा खतरा तश्कील दे रहा था। वीनस बहरी कजाकों की हौसला अफजाई करता था और ये कजाक उस्मानियों के तजारती माल से लदे बहरी जहाजों को लूट लेते और हाजियों के काफिलों पर हमले करते रहते थे। यही वो असबाब थे जिन्होंने मार्का कब्रस को उस्मानियों के लिए एक मशहूरी बना दिया था। बहरा रूम में उस्मानियों की कतई हुक्मरानी के लिए जजीरे की फतेह जरूरी थी। प्यारे सामीन, इस किस्त में हमने न सिर्फ एक फतेह का बल्कि एक अहम तारीखी मोड़ का भी मुशाहदा किया है, लेकिन ये हमारे सफर की महज शुरुआत है। अगली सियाहत में हम देखेंगे कि इस जंगी चाल ने किस तरह पूरे मशरक बहरा रूम के तवाजुन को तहबाला किया और नक्शों को एक नई शक्ल अता की। उस वक्त तक अपने मेज़बान मिसबा शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।